0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के

0: साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
1: सवाबी। तोलू मुसलमानानु रुणता खुसूसी इतला इज्तिमा सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बा द हर काल पशान दाज लहुम मंजली की गी खपा अकीदत और एहतराम सरा अलसम सितंबर द ज़ियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा द मुल्क नुमोड़े उलमाए कराम और नाथ खानान बरख अखली कि पहाड़ी की मेहमान खुसूसी भई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी सेब नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह सेब चारसदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी सेब पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह सेब द पेखवरना और मौलाना फजल अली हक्कानी सेब और शेख मोहम्मद खान सेब द चोटा लाहौरना बखुसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान सेब अयूब शाह सेब और नूर मजीद योशमार नात खानान ब नात खानी कवि बतास्तुल मुसलमान तख्वास्ते चिपसीरत खातमुन नबीन इज्तिमा के भरपूर दादात की शिरकत हो के और सवाबिदारैन हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा सेब और मौलवी साबित शाह मजहरी सेब पता मदरसा खानका मियाँ डेरे सवाबे नुतास्तुल पकार दे चेदी फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद मालूमात पारा मोबाइल शमेरा 0334-9040-877।

0: Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: टोलू मुसलमानों नु रुनता खुसूसी इत्तला इज्तिमा सीरत खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम बा द हर काल पशान दाज लहुम मंजली की खपा अकीदत और एहतराम सरा अलसम सितंबर द ज़ियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा द मुल्क नुमोड़े उलमाए कराम और नात खानान बरख अखली कि पहाड़ी की मेहमान खुसूसी भई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी से नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह से चार सदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी से पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह से पेखवरना और मौलाना फजल अली हक्कानी से और शेख मोहम्मद खान से चोटा लाहौरना बखुसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान से अयूब शाह से और नूर मजीद योशमार नात खानान ब नात खानी कवि बेतास्तुल मुसलमान तख्वास्ते चिपसीरत खातम नबीद इज्तिमा के भरपूर दादात की शिरकत होके और सवाबदारे हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा से और मौलवी साबित शाह मजहरी से पता मदरसा खानका मियाँ डेरे सवाबे नुतास्तुल पकार दे चेदे फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद द मालूम द पारा द मोबाइल शमेरा दा 0334-9040-877।
3: वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
4: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
3: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
4: नुदा सिवाया कना
3: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 0938273265।
5: दिस रेडियो स्टेशन प्लेज ओनली म्यूजिक टुडेज बेस्ट म्यूजिक।